वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

हल्का बोलना सिर्फ तुहानू ही अपनी आवाज़ सुनाई दे, फिर रसना द्वारा बोलना बंद करके अंतर्गत होंदे जाना। अपना अपना इत्थे आपां देखना, जदों साडा मन टिकाऊ चाहुंदा उस वक्त अंतर्गत हो जाना, ते स्वास दे नाल सुरती द्वारा अभ्यास करना।

अंतर्गत सुरती द्वारा सिमरन करना, बोलना नहीं, रसना द्वारा आप नेत्र बंद रखने।

अंतर्गत हो जाइए, सुरती द्वारा सिमरन करिए, ध्यान द्वारा अंदर नु श्वास चंद बाहर नु श्वास गुरु।

गिरे वाह गिरे वाह गिर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी गुरमुख प्यारे, ये सारे बच्चे इन्हां दे टीचर साहबान जिन्होंने तीन दिन इन्हां ते मेहनत की है सतगुरु सच्चे पातशाह दी रहनुमाई अंदर इन्हां नूं गुरमंत्र दा अभ्यास दृढ़ कराया, बैठना सिखाया, दे नाल ही इन्हां बच्चों ने जो पहली पौड़ी है जपजी साहब दी ओह दृढ़ कीती है, ते इन्हां बच्चों ने जो शब्द विचारे आ जिहड़े साडे मन की कहानी है जिद्दां गुरमुखां ने आपां नूं समझाया उवें ही सौखे शब्दां दे विच इन्हां दे टीचर साहबान ने इन्हां बच्चों नूं ये समझाया। नाल ही गुरमुखां ने गुरबाणी की संथ्या जिहड़ी है गुरमुखी किस तरीके नाल गुरबाणी का असी उच्चारण करना, क्योंकि आपां देखते हाँ कहनो तो असी सारे ही कहने सानू साडी भाषा आउंदी आ पर साडा उच्चारण ना ही सही हुंदा कई बार, तो उस दे उपर भी मेहनत कीती है। सो आप हुण सब तो पहला तो सारे बच्चे आप सारे सावधान हो के बैठीए, सारे बच्चों के चरणों के बेनती है कि आप सारे सावधान हो के बैठीए तो गुरमंत्र का अभ्यास करिए सारे एक लय दे विच। वाहिगुरु, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, बच्चे उच्ची आवाज़ दे विच जिवें तुसी सिमरन की विधि समझी है उदा तुहाडी आवाज़ सारयां नूं सुननी चाहीदी एक लय दे विच।

0: का खालसा वाहेगुरु की फतेह।
1: भाई साहब भाई सेवा सिंह जी तर महाराज जी ने सानू चार परहेज दसे आ जो सिमरन करते हैं जो गुरमुख इस रस्ते ते चलदा ओदे लई चार परहेज भी नाल नाल करने होंदे आ जिदा दवाई लैनी है असी ते नाल नाल डॉक्टर कहिंदे ना परहेज भी करने आ इस तरह महाराज सानू बाणी च दस रहे आ कि असी परहेज भी करने होंदे आ नाम जपदे समय असी किसे दे नाल भी दुविधा नहीं करनी होंदी किसे दे निंदिया नहीं करनी होंदी होमे तो रहत रहना होंदा ते लोक लज्जा तो उपर उठ के असी अपना जीवन जीना होंदा ते नाल नाल असी गुरमंत्र दा अभ्यास करना होंदा ए आपां नूं बच्चे समझा रहे सी। हुण नैक्सट अपने कोल ने रतनवीर कौर ए आपां नूं भेत देणगे भी चित्रगुप्त की है।
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सिखांगे चित्रगुप्त बारे। चित्रगुप्त है जो साडे चंगे माड़े कर्मां नूं लिखदा है एंड साडे सवास पूरे होण तों बाद जदों सानूं धर्मराज दी कचहरी विच लैके जांदे हैं उदों चित्रगुप्त साडे सारे चंगे माड़े कर्म दा वरका धर्मराज कोल कलदे है। चित्रगुप्त आपां नूं हमेशा रिकॉर्ड करदे ने जस लाइक अ फिजिकल कैमरा बिकॉज परमात्मा जी इज ओमनीप्रेजेंट ऑलवेज एंड दैट मीन्स ही इज एवरीवेयर एवरी टाइम। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: जोरावर सिंह जोरावर सिंह सानू माया दे गुणा बारे दसनगे बाकी बच्चों के चरणों से बेनती है आपां क्वाइट रहना बिल्कुल चुप सो आपां सुनिए जो गुरमुख सानू दस रहे ने।
2: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। टुडे आई एम टेलिंग यू द थ्री गुण्स ऑफ माया। Maya's three guns are Satgun, Tamagun and Rajagun. Satguns have all the kind stuff like kindness, helping other, mercy, respect, patience. Rajagun has

0: जेकी फतेह,
1: हरलीन कौर,
0: वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स ऑफ मन। दे आर चित्रगुप्त, आत्मा, धर्मराय, पंच चोर, काल, माया एंड जाम। चित्रगुप्त रिकॉर्ड्स ऑल एंड ऑल गुड एंड बैड थिंग्स वी डू। चित्रगुप्त इज रिकॉर्डिंग अस राइट नाउ। इमेजिन चित्रगुप्त एज अ कैमरा, always watching, recording all you do. Chitragupt then passes the recording to Dharamrai, who then counts how many good things and bad things you did. Dharamrai is the calculator. Maya has two types, visible and invisible. Visible Maya is everything we can see, like me, the walls, etc. Invisible Maya is everything in our minds, like ego, anger, greed, and attachment. Both mayas distract us from doing Vaheguru and stop us from getting to Naam. The Panch Chor guide us away from getting to Naam. They are ego, lust, anger, attachment, and greed. Imagine you

0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतेह। परवान सिंह वाह गुरु वाह गुरु वाह।

वाह गुरु, करम कौर सानू हारमोनियम ते कीर्तन करनगे हुण। वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहगुरु

गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह ग्रह वाह।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दू

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोंपन भ्रष्ट गगन ते पई सबहिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अखल पवन के सृजनहारे दास जान मोहले हो उबारे। कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो। आम हाथ दै मोह बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करिया रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुस्त

काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट की पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बोझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो हितेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं उपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सोयं पव। आप रक्षा मेरी तुम करो, सेख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताव तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह अश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो ए वस्त तजी न जाई नित नित राखे उर तारो

तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सतगुरां ने सानू ये भेत बख्शिश किया कि जो उस मालिक पिता वाहिगुरु के मुख तो एक आवाज़ प्रगट हो रही है जिस नूं नाम कहा गया है, तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी। ओ नाम दे विच ही सारे खंड ब्रह्मांड परोए हुए हैं। नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, तो नाम सारे जीवां दे अंदर गुप्त है। जिस बारे पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहब जी की बाणी अंदर सानू बख्शिश करते हैं कि नौ नित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इस का विश्राम। सो असी गुरु घर उस मालक के नाम का भेत लैन आते हाँ। अपनी हुण तक किन्नी उम्र बीत चुकी है, सानू हजे तक नाम का भेत नहीं आया कि असी नाम तिकर साडे मन ने पहुँच के किवें मुक्त होना है। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी सानू गुरबाणी दे विच बख्शिश करते हैं कि जिहड़ा जीव नाम तिकर नहीं पहुँचिया वह जीव मुक्त नहीं हो सकता, वह आवागमन के चक्कर दे विच रहेगा। सतगुरां दी गुरबाणी अंदर बचन हन कि जिन्नी गुरमुख नाम ना बुझिया मर जन्मै आवै जाए। सो आपां नूं गुरमुख प्यारे बहुत ही सौखे शब्दां दे विच नाम दा भेत दे रहे सन कि साडे मन ने नाम नूं सुनना हुंदा है। नाम दा कोई रूप रंग रेख भेख नहीं है, तो वह नाम नूं असीं केवल ते केवल सुन सकते हाँ, क्योंकि नाम साडे मालक पिता वाहिगुरु दे मुख दी एक आवाज़ है। जो सतगुरु जी वचन करते हैं कि तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी। जदों जीव सिमरन अभ्यास करके अपने मन के विचार रोक लैंदा है तो वह मालक पिता कृपा करता है सानू साडे इस घर दे विचों दसवें द्वार दे विचों वह नाम सुनाई देन लग जाता है। तो वह नाम की पछाण सानू गुरबाणी दे विच दसी है, कर कर ताल पखाव जनैन हो माथे वजे रबाबा, करन हो मध बांसरी बाजे जिहवा धुन अगाजा, निरत करे कर मनुआ नाचे आणे घूंगर साजा। ये पछाण सानू सतगुरां ने गुरबाणी दे विच दसी है कि जदों जीव ते किरपा हुंदी है वह सतसंगत दे विच आउंदा है। महाराज कहिंदे सतसंगत कैसी जाणी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सानू एक नाम का भेत लेना हुंदा है क्योंकि इस देही दा इस मानस जन्म का एको एक परपज है कि असी नाम तिकर पहुँचना है। जिन्नी गुरमुख नाम ना बुझिया मर जन्मै आवै जाए। इस करके बार बार सानू सतसंगत दे विच गुरमंत्र का अभ्यास करवाया जाता है। स्वास अंदर जांदिया वाहे, स्वास बाहर आउंदिया गुरु, इस आवाज़ नूं असी अपने सरबणा द्वारा सुनना हुंदा है। महाराज कहिंदे धुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जदों साडा ध्यान अपनी आवाज़ दे विच लीन हो जाएगा, फोकस करांगे असी अपनी आवाज़ ते, साडे मन दे जो विचार चल रहे हन, कदे रजोगुणी विचार, कदे तमोगुणी विचार, कदे सतोगुणी विचार, इन्हां विचारां तो जदों साडा मन मुक्त हुंदा है तो साडे मन दे विचार रुकदे हन, तां सानू साडे अंदरों इन्हां सरबणा राहीं उस मालक दे मुख दी आवाज़ नाम सुनाई दिंदा है। महाराज कहिंदे ए सरबणो मेरे हो साचे सुनने नौ पठाए, साचे सुनने नौ पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਢਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ,

ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए बल शब्द साखी सो सच्चै कर जो गुरु गुरु एहनस जपै दा।

0: गए मसकत काल नानक ते मुकु जले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप

0: सर्वत्र गंता
1: कि सर्वत्र भेखी कि सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र काजे कि सर्वत्र राजे
1: सर्वत्र सोख कि सर्वत्र पोख
0: सर्वत्र त्राण कि सर्वत्र प्राण
1: सर्वत्र

0: शिकन है रासुफिकन है
1: कलंक पनास है समस्त निवास है
0: अगंजुल गनीम है रजाएक रहीम है
1: समस्त जुमान है कि साहिब किरान है
0: नरकन पनास है बहसुल निवास है
1: किसा गुल गवन है हमेशल रमन है
0: तमामुल तमीज है समस्त

0: तो है प्रसाद गुन मन पर नाम गुन गन मुदाम
1: हर बार अगंज हर नर पर बंज
0: अन गन पर नाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड पर नर अमंड
0: अनुभव अनास मुन मन प्रकाश
1: गुन गन पर नाम जल थल मुदाम
0: अंचिज अंग आसन अपंग
1: उपमा अपार गत्मित उदार
0: जल थल अमंड दिस विष अपंड।

0: लायक है,
1: विशंबर है कनाले
0: लायक है, सरपायक है,
1: भंजन है और गंजन है,
0: तापन है जब जापन
1: है, सर्वाकृत है,
0: करता कर है हरता,
1: परमात्म है सर्वात्म है,
0: आत्म बस है जस के जस है,
1: पर्याप्त छंद नमो सूज सूजे नमो चंद्र चंद्र है।

0: तन स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो पूज पूजे नमो पान पाने
1: नमो प्रलय कर्ता नमो शांत रूपे
0: नमो इंद्र इंद्रे अनादन में
1: कलंकार।

0: सवार
1: कोर तुरंग कुरंग से कूदन पौन के कौन को जात निवारे
0: कुजान के पूपली बदन्यावत शीश न जात बिचारे
1: एते पे तो कापे कूपत अंत को नंगे पाए पधारे
0: फरे सब देश सांड को बाजत टोल मदरंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: विक भगवान के पूपत कौन गने ने जात बिचारे
1: श्री पद श्री पद नाम पदे विनयंत

सोई गुरु समझो हमारा शिवकन को सतगुर सुख दियो सतरन को पल मोहब्बत कियो चीटी ते कूचर तूला सब पर कृपा दिश कर भूला एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जाबा कर कर तो कबू तुम मिलत दे तर सबू।

0: जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पैर दा जियो पिंड सब, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी

चक्र चिहन अर्बर न जात अर्पात न हेन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्रान सहे सहन गणिज त्रिपवन महीप

अहनिस सहज सुभाए दर्शनम परसेय गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खुसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पात साह सिर साहांद साहो जिस पास बहिठया सुही है सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराध्य मिल साधु समागे